0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।

0: चाहिदा
1: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की हुआ
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
3: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
2: याद रखो 9077-9733
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तुहाडे नाल
4: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू बारे दसन लई
4: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेकअप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिखा ले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430 103।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू। किचन द स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton. Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
0: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
4: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

0: पुलिस बूस बस के लिए बाएं मुड़े। सांस की जांच उपकरणों वाली पुलिस मोटरसाइकिलों के लिए दाएं मुड़े। जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
1: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
2: भरत मान कोल दो ही चीजां हुंदियां ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख करोड़ इनएज सरपंच।
3: सरपंच हर ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
2: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
4: जी की हाल है पिट दर्द दा?
5: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
4: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
6: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते।

0: Bankers. अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले. याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा. कॉल 0491-999-555. शर्ता लागू.
1: चलदी दा नाम गड्डी. आते सुनिया ही होना. ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले. याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने. तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप. टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड. कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au.
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी, ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने.
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान. बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट.
4: फिर लवाइए किथों?
3: सन करंट वालिया कोलो. 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी.
5: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-01-246.

0: सारा चलाई नू।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: 요하지 소나소 치하타레
1: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 एम। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 एम। थैंक यू।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
3: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
4: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
3: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
5: They have slavery.

0: बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान, बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए कित्थों?
0: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
3: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानु वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0403-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
4: वैरतमान कोल दो ही चीजां हुंदियां ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव करोड़ इनेनेस सरपंच।
5: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
4: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
6: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकदा है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नू देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
7: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, Radio हांजी रे हवाले नाल पाओ 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
4: Wow, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: क्या आप एक ड्रिंक के लिए मना करना पसंद करेंगे या फिर ये कहना कि नहीं मैंने अपना लाइसेंस गवा दिया है?
7: वैसे मैं ज्यादा शराब पीने वालों में से नहीं हूँ। हमारे काम पर एक सेलिब्रेशन था और मुझे लगा कि मैं ड्रिंक लेने से मना नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि मैंने तो कानूनी सीमा के भीतर ही पी है, लेकिन मुझे 0.05% से ज्यादा ब्लड अल्कोहल के साथ ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया। अब मैं ड्राइव करके अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी मम्मी को कहना पड़ा कि मैं उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उन्हें ना कहना सबसे खराब सजा है। काश इस सब की बजाय मैंने उस दिन ड्रिंक लेने से मना कर दिया होता।
6: जिम्मेदारी से रहें। अगर आपने शराब पी है तो ड्राइव नहीं करें। TAC से एक संदेश।
3: चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़ी नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़ी बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: सोना चाहिदा,
8: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
9: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: ता किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए?
4: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
3: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट, सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
5: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हां पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
6: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
5: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल
2: 0493-536-042. देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद इन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
3: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
5: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

Brokers. अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555. शर्ता लागू। Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।

और क्यों एक मूड ते आके मैनू लगदा है कि तेरी होंद नू बयानण लई जिवें हमेशा ही कोई कसर बाकी रह जांदी है। मैं तैनू दुनिया के नज़ारियां नाल मेल मेल के वेखण की गलती कर बैठा, पर तू तो अपने आप विच मौलिक अलहदा ते कुदरती शाना दी सिरजना है।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
2: हां जी रेडियो

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: चलो बंद करो गाना।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।

अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाए रहां लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़ै टुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म ना कोए, नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोई।

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाक खाए।

जो तुद पावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तांदे पानी तोता पुत्र सखे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए, परिये मत पापा कै संग ओ तोपे नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती मां कवन, जित हुआ आकार, वेल न पा

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंग

केतिया दुख भूख सदमार ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए ओ जाने।

प्रांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काट कड़ी है बहुत अनूप कांकियां गल्ला कथियां ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़ी है सुरां सिदां की।

के रूप न कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसै नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

तीरे सुनियार एरन मत वेद हथियार पौ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ताल करिए शब्द सच्ची टकसाल।

अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्ध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगग उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं अछेती अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियांग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ती निदाने नमस्त्वंग निनाथे नमस्त्वंग परमाते नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अभंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साये नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनाशी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम भेहीन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन पे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार महिमा अपार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनार

लानकान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां बरनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरसय अदृशय अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजन प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाह स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंगख्याता सर्वंगज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕੇ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕੇ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਲੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ

गण मुदाम हर बार अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रगास गुणगण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनाश त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंभर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कृताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो भांग भंगे अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे

0: लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कौन ले पायन पुत्रो सिर कौन लिंग ले ढलकायो कौन लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा न कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख लो।

दसकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सभी ते रहत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

पतत पावन भगत वत्सल करुणा निधान अंतर्यामे सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी दे महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे अमृत वेले दीवान सजिया सजे दीवान विच सब चौंकी आसा जी दी वार दा कीर्तन गुरमुखां ने सरवण की

एक अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म वो एको ही है। नाम अनेका हो सकते ने कदे, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेव गुसैया, कोई अल्लाह है, बकरे बकरे नाम, पर मालिक वाहेगुरु परमात्मा एक ही है। ओंकार उच्चारण मात्र से रक्षा करने वाला, ओंकार उत्पत्ति का कारण है, ओंकार ही एक है। तो जो एक ओंकार है सर्वदा प्रकाशक, सुजाति विजाति स्वागत भेद तो रहत, सो ओंकार है। भाई गुरदास कहिंदे एक वाओ पसाओ विच निरंकार आकार बनाया, एक महावाक दे नाल निरा आकार ने ए आकार बनाना कीता है, आकार बनाया, ए आकार निराकार ने बनाना कीते न। ओंकार दे 63 किस्म दे भेद सतगुरां ने एक कह के सारे मिटा दिते ने। ओंकार क्या एक है, फिर उकार मकार अकार पुन अर्ध बिंदु पहचान, चारों को समुदाय कर ओंकार पहचान। एदे विच गिनती दे विच एक लिखिया, क्योंकि सारे बंदना तो मुक्त है एक। फिर उड़े दा मुंह खुला उनू होड़ा कही दा, असल दे विच अर्ध बिंदु आकार संकेत है इशारा। तुम्हारा सचे पातशाह जी अर्ध बिंदु आकार ला करके ओंकार, प्रथम है ओंकार तिन कहा, पहला ओंकार किया, इस धुन तो आकार बना दते ने। ओंकार एक है, त्रई काल अबाध्य तुं, सत्य तुं, चेतन तुं, आनंद तुं। अबाद नाम कटण दा, कटण तो रहित कौन कट सकदा, एक नूं कोई नहीं कट सकदा। तो इस करके अबाद, बाद नाम झगड़ियां दा, झगड़ियां तो रहित, एड़ा गेतर होण करके आबाद झगड़ियां तो रहित बन गया। अबाद तों सत्य तों, फिर सत स्वरूप अविनाशी नाश तो रहित स्वरूप है। चेतन तों चेतन दा स्वरूप है, प्रसाद नाम आनंद दा है। सत चेत आनंद स्वरूप है ओंकार, सत नाम अविनाशी दा, अविनाशी नाश तो रहित, जो सदा पहला भी हुण भी तगा भी एक रस रवे उनू कही दा अविनाशी है। सतगुरु जी सदा अविनाशी ने, आ बिनाशी विनाश तो आ रहत ने, इस करके सत स्वरूप ने। गुरु नाम बड़े दा हुंदा, गो नाम गिरता तू दा है, गिर नाम निगल जान दा है, अज्ञान दे ताई निगल के रो नाम प्रकाश दा है। तो अज्ञान दे विच प्रकाश करन वाले नू कही दा गुरु। ते महाराज कहिंदे गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। गुरु तो बिना समझ नहीं आउंदी, गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुरु तो बिना कोप हनेरा है, समझ नहीं आउंदी। इस करके गुरु साहब ही है जो साढ़े अज्ञान दे विच रो प्रकाश करन वाले है।

0: महाराज तुहाडे जदों मैं बचन सुनदा मेरा मन मन जांदा तुहाडे बचना करके मैं बड़ा खुश हां तुहाडी बाणी सुनदा तुहाडे बचन सुनदा तुहाडे मुख तों तुहाडी बाणी जदों मैं सुनदा ना मेरा मन उन्हां बचना च मन जांदा मन माने लोग ना भतीजा ना भतीजा तो क्या कीजा मन मन्या लोकां नूं यकीन नहीं आउंदा ना आवे की करिए लोकां दा फिर महाराज तुहाडे बचना च ए मोर मेरा मन माने मन गया है
1: जन को पूरन दीजा
0: तुहाडा जन सेवक हां महाराज जी मैनूं पूरन ब्रह्म ज्ञान दी दात देना करो इस संसार दे विच पूरे गुण देना करो अधूरा ना रखियो सच्चे पातशाह मेरी बेनती है मैनू अपना रूप स्वरूप बना लो जन मैं तुहाडा प्यारा गरीब निमाणा निताणा हां मैनू ब्रह्मानंद पूरन दियो आत्मानंद पूरन दियो भजनानंद पूरन दियो ते ब्रह्म ज्ञान पूरा मैनू दीजा देना करो
1: हां बल बल जाओ रमैया कारने
0: रमैया हुंदा जो रमिया होया जर्रे जर्रे विच कणकण दे विच सारे थावां ते व्यापक उनू कहिंदा रमैया रामैया हों बारक तेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा हे रमैया मैं तुहाडा बच्चा काहे न खंडस क्यों नहीं तुही मेरे अवगुणा नू खंडस खंडन कर दे मैं तुहाडे तों सर्व व्यापक वाहिगुरु बल बल जाओ बारे बलहारे जांदा बार ने बलहार ने लख बरिया नाम नाम साहिब को प्राण दरिया एक बारी नहीं बारे जांदा एक बारी नहीं बलहारे जांदा लख बरिया मेरे मालिक लखां बारी तुहाडे तों कुर्बान कुर्बान कुर्बान जाना बलहारी गुरी अपने दिहाड़ी सदबा जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार महाराज तुहाडे तो बलहार बलहार कुर्बान जाना दिहाड़ी दिन विच सदबार सैकड़े बारी एक बारी नहीं तुहाडे तो मैं लखां बारी बारे जाना रमैया के गुण चेत प्राणी कौन मूल ते कौन दृष्टानी मालक दे गुणा नू याद कर की तेरा मुड़त की माली ने तेनू बनाया ते उस नू चेते करके उदे तू बलहार जा मालका मैनू तू ए किन्ना कुछ दे दिता है इन्ना ते मैं मंगिया नहीं उन्ना मंगे तू बिना ही तू एडा कुछ दे दिता मैं बलहार जाना नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुग्ध मोहि तारे ऐसे गुर को बल बल जाइए पढ़ी चलो ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुग्ध मोहि तारे ऐसे गुर को कैसे गुर को जेड़े आप मुक्त ने मैनू तार देणगे संसार दे विचों जेड़े नारायण जिन्हां नू अविद्या दी रायण रात है ही नहीं ओ नारायण नारायण नरां विच जिहड़े आयन आए हुए ने साक्षात रूप दे विच आत्मा स्वरूप बन करके मनुखां दे विच आए हुए ने नारायण नरपत सारे जिन्ने बंदियां दे मालक ने सृष्टि कायनात दे मालक सतगुरु जी ऐसे गुरां नूं कहिंदे बल बल बलहार बलहार कुर्बान जाने आ जो आप मुक्त मोए तारे मैनू तारनगे रमैया जर्रे जर्रे विच कणकण विच समाए हुए ने तो उस कारण स्वरूप जर्रे जर्रे विच रमे हुए परमात्मा तो हों असी तमाम जीव भगत रविदास कहिंदे मैं बारे बारे जाना बलहारे कुर्बान जाना
1: कारण कवन अबोल
0: भगवान वाहिगुरु क्यों नहीं तुम मेरे ना कौन दे क्यों नहीं तुम मेरे ना गल कर दे तुहाडा मैं बोल नहीं सुनदा मेरे अंदर तड़प पैदा हुंदी है सौ बारी सिख सोचन लग पैंदा भगत सोचदे आ कि मेरे को गुनाह हो गया क्यों नहीं मेरे भगवान वाहिगुरु मेरे नाल बोल दे मैं की गलती कर ली है अपने आप नूं कोसन लग पैंदा सिख ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ

सात संगत जी मारू राग है। मारू राग दे विच बाणी भगत जयदेव जी दी है। जयदेव ते जयदेव ए नाम आप जी दा प्रचलित है। जियो की भगत जयदेव जी। सो सात संगत जी मान भगतां विचों 15 जे भगतां दी गल करदे आ उना भगतां विचों भगत जयदेव जी होए ने ते तिना दी बाणी एक जयदेव जी दा पदा परमाद पुरख मनोपमंग सदात भाव रतंग परमत पतंग परकृत परंग ओ पावन शब्द आपां सरवण करदे आ जयदेव जी दा पदा। इत्थे जयदेव जी दी बाणी मारू राग दे विच तगरीब निवाज कृपालू दाता कृपा करदे ने। भगत जयदेव जी दी बाणी गुरु

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। आज हम बात करेंगे उस देवता की जिनका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। वो हैं शनि देव। कोई कहता है शनि की 7.5 चल रही है, कोई कहता है शनि का ढैया लगी है, तो कोई शनिवार के दिन डरते डरते मंदिर जाता है। किंतु क्या सचमुच भगवान शनि देव केवल कष्ट देने वाले देवता हैं? क्या वे क्रोध के देवता हैं, या फिर भगवान के ऐसे प्रतिनिधि जो इस संसार में निष्पक्ष न्याय करते हैं? जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। तो सबको डराने वाले शनि देव के माता पिता कौन हैं और उनका जन्म कैसे हुआ, ये बताते हैं हमारे पुराण। पुराणों के अनुसार भगवान शनि देव, सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या देवी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, उनके साथ विवाह हुआ। वे सूर्य का तेज और ताप संभाल नहीं पाई, या कहिए बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उन्होंने अपनी ही छाया को सूर्य देव की सेवा के लिए बोल दिया और खुद तप करने चली गई। सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र हैं शनि देव। कहा जाता है जब छाया देवी शनि देव को गर्भ में धारण किए हुए थी, तब भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। उनका मन पूरी तरह भगवान शिव के ध्यान में लगा रहता था। उसी तपस्या का प्रभाव गर्भ में पल रहे पुत्र पर भी पड़ा। तभी तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं सुन रही हैं, वो भगवान के भजन सुने, भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका शरीर श्याम वर्ण का था, उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और उनके मुख पर वैराग्य की झलक दिखाई देती थी। कहते हैं कि जन्म लेते ही शनि देव की पहली दृष्टि अपने पिता सूर्य देव पर पड़ी और उनके तप और योग बल में सूर्य देव का तेज कुछ समय के लिए मंद पड़ गया। सूर्य देव आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि ये बालक अशुभ है। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे सूर्य देव, यह बालक किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं आया है, यह संसार में न्याय की स्थापना करने आया है। यह प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। तभी से शनि देव को कर्म फल दाता कहा जाने लगा।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड टी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। हां

0: ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ Mustang, brand new demo ਤੇ quality pre-owned vehicles, trade-in ਅਤੇ finance options ਵੀ available। ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Ford ਦਾ test drive ਕਰੋ, business fleet ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, vehicle experts Tim Forbes ਜਾਂ Corey ਨਾਲ। Radio ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए कित्थो?
2: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
1: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
3: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया। हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन। बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनालिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

0: तो आज तो 7 साल बाद आज दे तरीक नु जो तू कल्प रहा ना तू ए वाला पूरा एरा कर रहा है यार बड़ा वधिया रहिंदा सीगा है ना बॉडी वॉज मूविंग बेटर है ना मैं थोड़े चार चीजा एक्सट्रा कर पा रहा सीगा सर्कल ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा बेटर सी ज्यादा वड्डा ही हुण तां मैं शंख बन गया अपने आप च थोड़ा रहना शुरू हो गया कि ये तो एक इस तरह की हैगी है जर्नी इस तरह की है कि तुसी हौली हौली हर वक्त कुड़दे भी रहने हो कि यार प्रेजेंट बड़ा तंग करता पे पास्ट अच्छा सी पर पास्ट जदों प्रेजेंट सीगा तद भी आही इशू सी
1: वो एक दिन आप कहानी पढ़ते ना ये रलती मिलती वो कहता भी कोई बंदा मौजूदा समय के तो चिक चिक चैन चैन करी जाए तो वो ये मनना है भी पुराना समा बहुत वधिया है पुराने समय के बड़िया चीज़ा बेहतर ही अज साडे उत्ते बोझ ज़्यादा वा अज भज नठ जिंदगी ज़्यादा वा है ना जो भी जिन्हें भी आप कहने नुकसान अजोके समय दे वो सारे उन्हें गणा दिते
0: बिल्कुल ठीक
1: तो वह किसी ने तथास्तु कर दिता भी चल तू उस समय दे विच चल जा फिर तो उस समय दे विच जो उन्हें प्रवेश किया तो हा ला ला ला ला ला ला है ना उधरों वो हले प्रवेश जा करके तो इधर उधर वेखे नहीं दिया ही तो उधरों जड़ा वो वजना शुरू हो गया उन्होंने जी मनादी करनी शुरू कर दी भी लड़ाई लग गई राज दे विच राजे ने कहा भी जिन्हें नौजवान है सारे आ जाओ तो वह सारे कट्ठे करके लै गया उन्होंने जाद कोई उन्होंने माड़ी मोटी जो भी ट्रेनिंग देनी दी ज नहीं दी तो उन्होंने कृपान फड़ा दी चल आल लड़न चली गए तो हूँ उत्थे लुकदा फिरे बुरे हाल उन्होंने जो उन्होंने फिर बड़ी डिटेल च हूँ मैं पूरी मैं याद नहीं रही उन्होंने रोटी भी दी तो उन्होंने मतलब वो थोड़ी अज वगू थोड़ी ही भी उन्होंने प्लेट धर के देनी ही भी टिफिन देना है भी आ लो तुम दही भी खाओ तुम दाल भी लो तुम पनीर ओके सॉरी आ लो तुम लड़न चलो तुम है ना
0: प्रोटीन प्रोटीन कंप्लीट करो बी चिकन शिकन प्रोटीन शेक है
1: एक ही रोटी ही तिना चौ जाने ने लड़के एक दूसरे को जो परों आया उन्हें भी ओथों खोली सो आपां कई वारी कई चीज़ां जिहड़ियां ने हुण उत्थे हुण जिहड़ा बंदा गड्डियां दा गिज्जा ही उत्थे उहनूं खोते ते जाणा पैण डिआ है ना घोड़ा भी वड्डे बंदिआं कोल ही आ
0: हाँ बिल्कुल ठीक
1: जां फिर तुसीं तुर के ही तुसीं सफर तय कर रहे हो है ना तुहाडे कोल फैसिलिटियां नहीं आ तुहाडे कोल तुसीं मतलब तुहाडे कोल इदां दे घर नहीं आ है ना तुहाडे कोल इह थोड़ी आ भी हुण पुराने समें च तुसीं चले ते जाओगे पर इह थोड़ी भी तुहानूं मास्टर बैडरूम मिल जूगा
0: इतने बड़ा औखा मिलता
1: है मान लो भी तुम मतलब जॉइंट बाथरूम मिल गया ना
0: जॉइंट मैनू तो लगता है पता नहीं ये आर्किटेक्ट जिहड़ा सीगा उन्हें लाइफ जी होनी है क्योंकि इतने कोई बनाते पता नहीं क्यों मास्टर बेडरूम जिन्ने भी
1: नहीं तो ताड़ी मर्जी है तुम्हें भावे अपना घर बनाओ
0: तो मतलब जे बनया बनाया इस तरह क्यों है भाजी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि इको मास्टर बेडरूम क्यों बनाते हैं मैनू तो यह बड़ी स्टूपिडिटी लगी मैं घर देखने गया आह वैसटर्न सबब वाली सबब का नाम नहीं लवांगा ओबियसली गाइस सॉरी तो मैं गया मास्टर बेडरूम वॉज ओके सब कुछ ठीक है टॉयलेट का दरवाजा ही नहीं है
1: अच्छा मास्टर बेडरूम टॉयलेट
0: दरवाजा ही नहीं है
1: ओके
0: तो मैं ब्रोकर ने कहा नहीं कहते डिजाइन मैं यार ये की डिजाइन है ए फायदा की है
1: लंबड़दार
0: बिल्डर तो बच के रो गए पता नहीं की बनाई जाते
1: नहीं वो तो होगा ना प्लान च नहीं होगा गोरिया स्टाइल होगा
0: की स्टूपिडिटी है आई डोंट अंडरस्टैंड दिस
1: इसे करके लिया
0: हाँ जेनुअनली सच्ची गल ओही सिर्फ पॉइंटर करके नहीं कर दिता
1: नहीं
0: मैं लीज कर रहा है ना सो कहते वी विल नॉट डू इट सॉरी लैना लो छड़ना छोड़ो परदा लवा लो मैं फिर भी बड़ी स्टूपिडिटी यार मतलब सारा दिन बंदा की नॉट नाइस नहीं तो मैं पसंद से सगो मैं हर पासों लग गया पैना है
1: देखो ये अजक ना कई चीज़ा विखावे वाली होंगे ने मतलब तुम मतलब डोंट टेक दैट वे तुम जिदा मान लो घर लैन गए हो तो ट्रडिशनल मतलब जी एक सोच होंगी ना साड़ी एक सोच के चीज़ा बैठी होंगे भी बाथरूम यार इस काम के लिए आ है ना टॉयलेट इस काम के लिए आ वह सोच चो बाहर निकलो
0: पर जिस काम लिए है वो तो रहेगा ही
1: अजक देखो
0: बंदा करे कि
1: अजक लोग रसोई बना वेख्या उत्थे रोटी थोड़ी बना
0: ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
1: ਵੱਖਰੀ ਸੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: दे अ स्लेव

0: सारा जुलाइनो।
1: क्या आप एक ड्रिंक के लिए मना करना पसंद करेंगे या फिर ये कहना कि नहीं मैंने अपना लाइसेंस गवा दिया है?
2: वैसे मैं ज्यादा शराब पीने वालों में से नहीं हूँ। हमारे काम पर एक सेलिब्रेशन था और मुझे लगा कि मैं ड्रिंक लेने से मना नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि मैंने तो कानूनी सीमा के भीतर ही पी है, लेकिन मुझे 0.05% से ज्यादा ब्लड अल्कोहल के साथ ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया। अब मैं ड्राइव करके अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी मम्मी को कहना पड़ा कि मैं उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उन्हें ना कहना सबसे खराब सजा है। काश इस सब की बजाय मैंने उस दिन ड्रिंक लेने से मना कर दिया होता।
1: जिम्मेदारी से रहें। अगर आपने शराब पी है तो ड्राइव नहीं करें। TAC से एक संदेश।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
6: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
7: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
8: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 10 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
9: आ रहा करण औजला दा पी पॉप कल्चर टूर ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न दा पहला शो कुछ दिनों विच ही सोल्ड आउट हो चुका है। हुण दूजा शो 19 अगस्त नू रोड लेवर एरिना विच। ऑस्ट्रेलिया दे होर शोज ते टिकट्स इनफॉरमेशन लाई विजिट करो livenation.com.au। गीता दी मशीन करण औजला पी पॉप कल्चर ऑस्ट्रेलिया टूर 2026।
10: सोना चाहिदा,
11: भरोसा चाहिदा,
10: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
12: टेंशन मेरी टेंशन
13: की होया
12: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
13: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
12: या 90-77-93
13: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
12: याद रखो 9077-9733।
13: VY Immigration and Education Consultant,
12: हर कदम तुहाडे नाल।
14: तुसी सुन रहे हो इस प्रोग्राम दा रिपीट ब्रॉडकास्ट।